0: जानसूर केते केते मंडल देश
1: सिद्ध बोध नाथ केते केते देवी
0: केते देवदान मन केते केते रतन सुमंद
1: केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरेंद्र
0: सुरति सेवा केते नान कांत नायंत
1: ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाथ विनोद कोड आनंद
0: खंड की बाणी रूप तथा घाट घड़िए बहुत अनूप
1: ताकिया गल्ला कथिया न जाए जे को कहे पिछे पछताए
0: मत मन बोध तिथे घड़िए सुरा सदा की सुध
1: कर्म खंड की बाणी जोर तिथे हो न कोई होर
0: जोध महाबल सूर तन में राम रहे भरपूर
1: तिथे सीतो सीता में माहे ताके रूप न कथने जाए
0: मरण ठागी जाहे जिनके राम वसे मन माहे
1: तिथे भक्त वसे के लोक करे नंग सच्चा मन
0: सोए सच खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल
1: तिथे खंड मंडल पर पांड जे
0: कथे लो लो आकार जब जब हुकुम तब तब कार
1: विखे कर विचार नान कथना करड़ा
0: सार पहारा तीरज सुन यार हरण मत वेदा थियार
1: खला अगन तपकाओ पांडा पाओ अमृत ताल
0: करिए शब्द सती तक साल।

0: शखत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल।
1: ओंकार सतगुरु प्रसाद जाप श्री मुख वाग पातशाह दसवीं शपथ संतो प्रसाद चक्र चिन्ह बरन जात अरपात नहिं जे
0: रूप रंग रेख पे को कै।

0: सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता
1: सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राणं सर्वंत्राणं
0: सर्वंकर्मं सर्वंतर्मं सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता
1: सावलशान्त्वयपरसादः
0: नरकनाशि सदैवं प्रकाश्यनंगं सूपेऽपं विभूते
1: परमार्थं परमार्थे सदा सर्वसाध्ये अगाधस्वरूपे निर्बाधविभूते
0: नंगीय न मित्रपंगितर कामनिरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
1: न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते
0: साक्षात् श्री कामितोमी कस्तवं भवः अजय है अजा है
1: भगवती शांतवय प्रसाद
0: सदा हजूर है के हाजिर हजूर है में सुसलाम है समस्त कलाम है
1: कि साहेब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है
0: रोजी देहंद है के राज करहंद है करीमल कमाल है कुसुम जमाल है
1: करीमल खराज है गरीबल निवाज है हरीफल शिकान है हरासल पिकान है
0: लंकम वर्णाश समस्त निवास है गंजन गनीम रजाय करीम है
1: समस्तल जुबा है के साहेब किरा है के नरकन पर नास है वस्तल निवास है
0: सर्वल गोवान में सर्वान तमाम तमीज है समस्तल अजीज है
1: परमीस है समस्तल अधीस है अधेसल अलेख है अमेसल अपेख है जमिनो
0: जमामी कोले मैं करीमल कमाल है के जुरत जमाल है
1: कि अचलंग प्रकाश है के मितो सवास है के अजब स्वरूप है के मितो बेपूत है
0: मितो बसंग आतंक प्रभंग चलंग नांग के मितो भंग है
1: मदपार शंत व प्रसाद
0: मन प्रण अंगुन गान मंदा मर पर गांजर नर पर पांज
1: अनगन पर नाम मुन मन सलाम हर नर खंड वर नर मन
0: पवन आश मन मन पर गागुन गान प्रणा जल थल मदाम
1: आंची जांग आसनी अपांग उपमा पार गत मित दार
0: जल थल मन दसवस पण जल थल मन दसवस बेअंत
1: पवन आस तिरतर त्रास आ जान बाहो एक सदा हो
0: ओंकार आदि कथनी नाद खल खंड ख्याल गुर बर अकाल
1: कर कर प्रणाम चित चर नाम आंची जगात आदि जिना बात
0: चंद जगात अनंज बात अंटट भंडार अंठट पार
1: आठीत धर्म हाथ ठीक कर्म अनबन अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत व प्रसाद
0: करनाल है हर काल है खल खंडन है मह मंडन है
1: जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है
0: जग के त्राण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है
1: सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वासे है सर्वनासे है
0: सर्वनाकर है विसंग पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है
1: ब्रह्मंड से है खल खंड से है परते पर है करना कर है
0: जपा जाप है थपा थाप है कृता कृता अमृत अमृत है
1: अमृत अमृत है करना कृत है
0: कृता कृत है परमेश्वर है कृता कृता अमृत अमृत है
1: अजपा कृत है अमृत अमृत है नर नायक है खल खायक है
0: संप्रह करुणालय है नरपनायक है सर्वपायक है
1: पंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है
0: अपना कृता सर्वा कृत है कर्ता कर है अर्तार है
1: परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात चंद्र
0: नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राज नमो इंद्र इंद्री
1: नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज
0: नमो रासंग तामसंग शांत रूपे नमो परम दतंग ततंग स्वरूपे
1: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान
0: नमो युद्ध युद्ध नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने
1: नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग
0: लंका रूपे लंकर लंके नमो आशास नमो बंग बंके
1: अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी
0: अकामे एक अचरी छंद जय लय भय भय
1: अबू अजू अनास कास
0: गंज पांज लख पख
1: अकाल दयाल लेख पेख
0: नाम काम गाट
1: अनाथे परमाते अजोनी अमोनी
0: नरागे नरंगे नरूपे नरिखे
1: अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे पचंग पर्यात छंद
0: समस्तल प्रणामे समस्तल प्रणास्य अंगंजल नामे समस्तल निवासी
1: कामंग बैपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग परनासी सो धर्मंग बैपूते
0: सदा सच धन अंतरंग प्रणाशी करी मुल्क निंदा समस्तल निवासी
1: अजाय बैभूते गजाय गनी में हरियम करियम करीम रहीम
0: चतर चक्र वर्ती
1: चतर चक्र पुक्ते सुयंभव स्वांग सर्वदा सर्व जुक्ते दो कालंग प्रणाशी दया स्वरूपे सदायंग

0: कटे ज्ञान अंजन सारिया।
1: अंदरों जिनका मोत टुटा तिनका शब्द सचा सवारिया।
0: नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया।
1: बाबा जिस तू देह सोई जन पावे पावे ता सो जन दे जिस नु और क्या करे विचारिया।
0: परम भूले फिरे दे दिस इक नाम लाग सवारिया।
1: गुरु प्रसादी मन पै

0: आप छड़ सदा रे परने गुर बिन अवर न जाने कोई।
1: कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए।
0: सतगुर मुक्त ना पावे,
1: पावे मुक्त ना होर थे कोई पुछो बवेकी आ जाए।
0: अनेक जूनी परमावे बिन सतगुर मुक्त ना पाए,
1: फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए।
0: नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए,
1: पावो सिख सतगुरु के प्यार।

गए मशक्त काल नानक ते मुख उजले तेती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

हर का नाम जन को मुक्त युक्त, हर का नाम जन को तृप्त भुक्त, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जप कब परे न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर का नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन का भोग जोग, हर नाम जप कछनाए वियोग, जन रत हर नाम की सेवा, नानक पूजा हर हर देवा, हर हर जन कै मालिक जीना, हर तन जन कुआ प्रभ दीना, हर जन के उठ स्थानी।

रात अवर किशावर कमावत मने बीत मुखोंगण लावत जन हार प्रभु पर बीन बार फेक न खाऊ भीन अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन्मै मरै जिसकै अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक जन चरण प्राता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना की आपे माने आपे आप आप करतन बेरा किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा पाव सियानम सल तेरा सब पी जाने आत्म की राहता जिस पावै तिसलै लड़लाए थान थनंतर आसमाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप